0: जी दे दर्शन जदों कीते जदों बचन सोहने सुने
1: पूरब सिमरत भी अब सब
0: ओ जिहड़ियां पिछलियां सारियां चीजां सी बचन बुलास सी अपने ओ तुहाडा रूप ओ मैनू सारा याद आ गया
1: भई शक्त मुझ बिखै बिसाल
0: मेरे विच बड़ी भारी शक्ति हो गई है
1: रखो पीर जी ले संभाल
0: पीर जी हुण तां तुसी रख लो तुसी संभालो मैनू
1: जितक प्रथम की बात बाचे
0: जिन्ना का आप जी ने पहले जेड़े बचन कहे सन
1: सब जानी मैं बीती सो साचे
0: मैनू याद आ गया के सारियां गल्लां बिल्कुल सच्चियां मेरे नाल बीतियां हन
1: दे तीरज तब प्रभ ठेग राखा
0: उस वक्त महाराज जी ने इनू तीरज दिता थापड़ा दिता अपने कोल ही रख लिया नाल ही
1: जिसको नित दर्शन अबलाखा
0: जिनू हर रोज सैदा बेग नू एक दर्शना दी अबलाखा ही सी होर कोई इच्छा नहीं सी
1: मुगल प्रमोद खलो और पायो
0: मुगल ने भाव सैदा बेग ने मन दे अंदर बहुत खुशी महसूस कीती
1: जीतक डेरा सकल लुटायो
0: जिन्ना क डेरा सी पैसा धन दौलत पदार्थ ओ सारा ही लुटा दिता अपनियां फौजां नूं ही दे दिता
1: सब किछ त्याग रहे प्रभ पास
0: सारा कुछ छड़ दिता कहण लग्या भई मैनू अपनी मंजिल मिल गई है इस करके मैं हूं गुरां दे कोल ही रहांगा
1: वे परलोक सुख लागी आसा
0: हुण मैनू ये आसा लागी मन च कि मैनू हुण गुरां दे कोल आके कोई फिक्र नहीं है इस लोक दा सुख भी मिलेगा परलोक दा सुख मिलेगा
1: सगल तुरक गए जब दूर उतरे डेरे बिखै हजूर
0: जदों सारे तुरक चले गए बहुत दूर लंघ गईयां फौजां उन्हां दीयां तां महाराज सच्चे पातशाह ने जिथे अपना डेरा कीता होया सी उथे जा के उतरे
1: खान पान दाना तिन पाए बसे निसा पूरब की थाए
0: घोड़ियां नूं भी खाना दाना पाया है और फौजां ने भी लंगर छकिया है अते रात नूं विराजमान होए
1: भई प्रभात कूच कर देन
0: अमृत वेल दा नितनेम करके उस तों बाद सूरज दे चढ़ाओ नाल

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुर के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनू चंगियां निहारियां खवाईयां चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: अज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लै आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके लै आवो
0: सोने दे सोहने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके लै आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े दे भी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहने छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गए है के जवै, उकसे उपर चढ़ बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैना करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे, अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: महाराज ने कहते यह कहे जे सिंह तुम खड़े किए उ दरवाजे से मूहरले पासे पहरे से वो सारा दान ये को खो लिया है इन्नी कादी इच्छा जाग पई उन्होंने
1: आवन जानो बंद करते दिज आदक सर संग
0: तो इस कृपा कहते आना जाना ना सारे ना बंद करता आप ब्राह्मण ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे ये कोई चंगी गल है या महाराज सच्चे पातशाह नु सुना रहे हैं
1: कहे सुने मैं किसके नाई उचित अनुचित लख न सकाई
0: अरे ये थोड़े सिंह बारे ही हुंदे जांदे ने ये तो किसी के कहे सुने च नहीं है ये तो ना योग अयोग जानते ने तो इस प्रकार के नाल हुण सिंह तो महाराज के सूल ते चलणगे जो सिंघां नूं हुक्म आ सी तां उह कम करना हुण माता जी कहिंदे मेरे अखे नहीं लगदे वो जिवें पिछे जे माता जी ने एक बारी अपनी मर्जी नाल ही कहता आखे लंगर एक टाइम कर दिओ मसंदा ने जाके डराता माता जी काल पै गया चारे पासे बई हुण तां बड़े लोग आ गए हुण तां अपना अन्न मुक जावेगा आपां वी भुखे मर जावांगे माता जी ने सतगुरु जी नूं कहण दी बजाए सीधा ही हुक्म करता भी लंगर एक टाइम कर दिओ जदों महाराज कोले खबर गई तां महाराज ने माता नूं पुछया माता जी ठीक असीं थोड़े साहिबजादे आ पुत्र हैं पालिया ठीक है पर गुरता गद्दी दे मालक आ हुक्म संगत उत्ते थोड़ा नहीं चल सकता तुसीं किहनूं पुछ के लंगर इउं कीता ये तो एक वो गल होगी कि बेसिदकियां वाली गल होगी महाराज ने कहा कि रोज तो तुसीं पढ़दे हो काहे रे मन चितवै उद्दम जाहर हर जीव परिया सैल पत्थर मैं जंतु पाए ता कर जगाग्या कर धरिया माता जी तुहाडा अपना स्थान है सत्कारयोग है पर तुसी अपनी मर्जी नाल कोई बचन ना करिया करो फिर काफी महाराज ने वीर रस विच आके बचन भी करते मसां बख्शाए सी सो इस करके हुण भी माता जी नाराज ने कहिंदे इह थोड़े जिहड़े सिंघ ने इह अपनी ही मनमर्जियां करदे ऐ
1: श्री सतगुर ऊचे बोल मात के सुने श्री सतगुर श्री मुक्ते भने
0: जदों माता जी दे उची उची बोल सुने तां उस वक्त सुभायमान मुख विचों गुरां ने इस तरह वचन कहा
1: मात कोप के सन अस कीना हुक्म तुमारो को ने चीना
0: सो उस वक्त माता जी कादा गुस्सा कीता है तुहाडे हुक्म नूं जाणिया नहीं है किसने नहीं जाणिया इने तुहाडा हुक्म मन्या दसो मैनू
1: सुन सुत ते प्रसंग कह दियो तौ सिर सदका बिपरन लयो
0: सुन के अपने साहिबजादे भाव दसवें पातशाह तो माता जी ने सारी गल सुनाई तुहाडे सिर सदका मैं ब्राह्मण नूं दान दिता सी मैं सारियां चीजां ब्राह्मण नूं दित्तियां सन
1: ले जा सो सिंगन छीने उदम किन्ने
0: देखो किन्ना उपद्रव किया उन्होंने निसंग होके आ सारिया चीजा उन्होंने खोलिया ब्राह्मण दे पासों
1: श्री सतगुरु।

0: महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बादशाह जो नरंगा है उहदे तों वी डरदे, इह तां बड़े भारी जिन्हां दीआं बाहवां दे विच इन्ना जोर है, इन्ने बली ने, इन्हां दे सिंह इन्ने योधे ने, सो इस करके बड़े भारी योधे हन।
1: देश उजाड़े छीने ग्राम, कई बेर तीनों संग्राम।
0: इन्हां ने कई बारी अपने नाल जंग कीता है, अते अपना जिहड़ा देश कहलूर है जां होर इलाके ने

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मना दे दल नू मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम, ए वर हो गया खालसे नू, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, एदी सिंघां नू बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अर दमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है आवे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गरजने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। लोक ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हती को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग पर हारे,
0: ये सारियां इको ही किस्मां बरछे दियां ने, तोमर ते सेला ते सांग, सोटी का फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिपर अगर कर किस खग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने ओह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतर आईयां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ।
1: ਮਰ ਮਰ ਪਰਤੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੇ,
0: ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰ ਨੀ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਮਾਰਨ ਸੌ ਸੌ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।
1: ਜਨਮ ਲੰਘ ਭਗੈ ਕੋ ਖਾਏ,
0: ਮਾਨੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ

0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यो कहने समाधि ला ली, गुर चरणा विच समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पढ़ सुने कलयुगता का दास।
0: जिहड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा, इह साखी नूं सुने, कलयुग दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओहदे भज जाणगे, भगती ओहदे हिरदे जागेगी, तन है गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जिहड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने वचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नूं सोहणा सुनाया इतिहास। आने वाला समा मुकदी गल मुकाईए बे, अमर छको दाड़ियां, जिहड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने, आपे ही लोग तंबाकू जिहा पीण लग जांदे ने, आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इको ही वचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको, गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी इह सारियां चीजां तां विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच, अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग के जीवां नूं शंके बहुते हुंदे ने। शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा, नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज इक कह देण भी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जे दे बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी, उह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भई किहने कहा, महाराज जी ने कहा। यह साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए, यह कहण दा की फायदा, फिर की बनेगा, गात्रा पा के की बनेगा, अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों। इसे करके विस्थार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो, सारियां गल्लां छड़ दियो पर नहीं मानते, फिर भी कहिंदे आह गल क्यों, आ किवें, इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहिंदे जे सारे जने इको ही वचन मान लो, उस विच ही भला है। महाराज वो किहड़ा वचन

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: होर जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रहा ही नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है श्रद्धालु है प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़ने वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए, सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, वह तां इक गुरसिख है। भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे खंडे बाटे दा अमर छक लवे गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: थुक देवे पिछों थुक देण दे मगरों भाव हाथ पैर आदिक धो लेने चाहिए ने। इहदे नाल कहिंदे उह फिर शरीर शुद्ध हो जाता है, होर कारण कुछ नहीं। आ कई लोग आप आम भी देखते हैं, तो जिवें न्याणे तुरे जाण उह कहिंदे भी कुलचे खाने है, कुलचे खाण उह कहिंदे जी मैं कहा कुलचे खाधे नहीं हुण, कहिंदे उह जिहड़ा रेहड़ी वाला सी ना वह पेशाब करके उसे तरह ही आके कुलचिया फिर हाथ ला के सानू देण लग पिया। इस करके नहीं खाई दिया, रेहड़ियां तो तुसीं इन्ना समान खाने हो, उत्थे खांदे आ उहदा जरदे मिली जांदे, शिकटां बीड़ियां पी जांदे ने, तां उत्थे फलाने थां आ चीज आपां अखां बीच बीच के खाई जांदे आ सारे थावां ते। अच्छा कई बंदे ऐसे भी देखे ने लघु शंका दे बाद अपने हाथ उत्त कोई नहीं धोंदे, देखो वह भी रब दे प्यारे ने जिहड़े साबण नाल हाथ धोंदे ने इन्नी कु किरिया तों बाद भी। इस करके सतगुरु ने इत्थे इह गल जिहड़ी समझाउण लई आपां नूं कही है कि हमेशा कोशिश करो। हुण आपां घरों आए हैं, मूंह भी धोता है, दस्तार सजाई है, केस वाहे ने, इत्थों वापस जाके बस जुत्ती पई पवाई तो ही खाण पीण लग जाना, ऐसा कर्म नहीं करना है। बाथरूम आदक जाके चंगी तरह हाथ धोने, फिर घर जाके भी पंज शनाना एक बार कर लिया करो, पैर धो लिया करो, हाथ धो लिया करो, चंगी तरह मूंह धो लिया करो, दो चार बार कुरली करके फिर पानी पीना। यह पुराने सिंघां दी मर्यादा हुण भी है, निंग सिंघ जथेबंदियां विच हुण भी जिहड़े चंगे सिंघ ने वो अपनी मर्यादा नूं इस तरह कायम रखते हैं। तो आप भी है भाई अमृतधारी, खासकर पोल्यूशन तो हुण डाक्टर कहिंदे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो पोल्यूशन भी है, बाकी हाथ पैर धोने कोई माड़े नहीं। महाराज ने इत्थे यही समझाया कि कोई भी शरीरक किरिया करो, अपने हाथ पैर धो के मूँह धो के कुरली करके चंगी तरह पवित्र होके कोई चीज खाओ, जां बाणी पढ़ो, जां आखो सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु।
1: पाप ग्रस है जब आन कै तिस्कार है बिद आन।
0: सो कहने जदों आके पाप आके ग्रसते ने ते होर किसे तरीके नाल विधि बन जाती, तिरस्कार दी नरादर दी जदों विधि बन जाती बंदे दे उपर,
1: बिना बुलाए बोलिए जा विद भली न मान।
0: महाराज कहने एक गल है भी जदों कोई बुलाउंदा नहीं चलाउंदा नहीं आपां नूं, कोई गल नहीं सुननी चाहुंदा, आपां खाम खां एवें गल सुनाइए, कहने जाणो मेरे पाप प्रगट हो गए, हुण कुट खाण दा टाइम आ गया मेरा। कहने जद कोई बुलाउंदा नहीं जरूर बोलना, एवें खाम खां बिच अगले दे गल दे गल करनी जाके। इस करके सतगुरु कहिंदे एक गल दा इह ध्यान रख्या करो, जद कोई रुख करे खास करके कोई इच्छा करे भी हां कोई गल सुनाओ जां गल करन दी जरूरत महसूस करदे आ तां गल करिया करो, बिना गल तो एवें गल छेड़ लैनी चंगी नहीं हुंदी।
1: आदे अंत रोटी ग्रहे देव पितर हित देन।
0: फिर कहने थोनों एक प्रश्न पूछा सी कि गृहस्थी रोटी पकाउण दे आद अंत विच रोटियां दे बनाउण दी विधि जिहड़ी लगी शुरू तो लैके वह दिंदे ने, कहिंदे इह हुंदी है पितरां दे निमित्त जां वेद दी उक्ति मूजब चलण वाले धर्मात्मा धर्मवान बंदे कहिंदे ने कि रोटी जिहड़ी है वह जरूर दान करनी चाहीदी है। अपने मूँह नूं रोटी हरेक दे जांदी है, रोटी हमेशा सियाणे पुरश दान करदे ने, किसे नूं भी पाओ, जानवरां नूं पा दो, जीवां नूं रोटी पा दो, किसे मंगते रोटी दे दो जां होर किसे रोटी खवा दो। कहने चंगी गल हुंदी है भाई, रोटी खवाउण दा बहुत

0: अपनी भैन माता छड के इसत्री लोग पालिया कर ज्यादा भैं मावा की परवाह घट ही कर इसत्री सूट लिया के दया कर
1: सुतनारी ससुरा भजै सासू भजै जमात।
0: इस प्रकार पुत्र नारी और जेडे ससुर आदिक ने इना दी ते सासू भजा जमात। कलयुग दे विच कहिंदे सस जेड़ी है वो जवाई नूं ज्यादा सत्कार दिया करेगी।
1: दास भजै भूपत जवत पिपल ने उपजै शांत।
0: ब्राह्मण तां ठंडे ही पै जाणगे कहिंदे ते जेड़ियां दासियां दास होणगे राजां दे नौकर आदिक होणगे ए

0: दोहेरा सबा सर्ब कवियन बिकै इस बिज भयो संवाद।
1: पिछे भी जो बीते हुए प्रसंग सारे लंघ चुके ने उन्हां विच कवियां दे नाल गुरां ने संवाद किया, बचन बिलास होए। इस तरह सारे बचन बिलास अगे

0: धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, खीर निध हुंदा खीर समुंदर। तुहाडा जिहड़ा जस है वह तो हुण खीर समुंदर तो भी अगे लंघ चुकिया है।
1: कीरत तिहारी तुम्हें कहके संदेश जो।
0: सो तुहाडी जिहड़ी कीरती है यह मैं किवें कर सकदा? तुहाडी कीरती तो बहुत असीं किवें कह सकदे आं? तुहाडा तो जस पहला ही इन्ना वड्डा है, इन्नी दूर जा चुकिया है कि तुहाडा खीर समुंदरों भी पार जिहड़ी कीरती लंघ चुकी है। सो इस करके ये कवि तुहानू तुहाडा जस कहण लई तुहाडे पास आया है संदेशा लैके मेरा, तो इहनू तुसीं माण आदर बख्शना।
1: जो भई सुन प्रसन्न कलगी तर है के राख्यो नित मान बो कह के।
0: भाई अमृत राय नू महाराज ने बड़ा सत्कार दिता, अपने कोल बड़ा माण आदर सरकार दे के पक्का ही रख लिया।
1: रोज दयो कर दरब खनेरा।
0: रोज इनू हुण बहुते पैसे ला दिते कि बहुत माया, इतनी माया रोज इनू मिलनी है, जां हर रोज इनू 50 रुपए मिलने हैं जां 100 रुपया, इउं रोजीना ला दिता है।
1: सुन सुन कर सुजस बडेरा।
0: इस तरह सुन सुन के गुरां दा बहुत भारी जस।
1: करण परब पाखा तिन केने छंद बंद सुंदर गत लीने।
0: ए करण परब एदी पाखा जिहड़ी है भाव देश भाषा विच बोली विच ए अमृत राय ने करण परब लिखिया सारा, महाराज जी ने कह के छंदाबंदी विच इहदे कोलों लिखवाया है।

0: महाराज ने इनू करण पर्व लिखण दा ही दिता। बड़ी जड़ी बख्शिश सी ना महिमा वो प्राप्त की है। इस तरीके दे नाल छंदाबंदी दी सोहनी चाल इन लिखी कवरेश ने, जो कवरेश केशोदास दा लड़का होया कवि। यह कवरेश ने द्रोण पुरब जिहड़ा है ना यह भाषा करके सुनाया। ते हंस राम जिहड़ा कवि दी पठानका तो पता लगता है कि हंस राम दा अगे नाम आवेगा। इन्होंने करण पर्व का टीका किया महाराज के कहने से, अमृत राय ने नहीं किया। सो हंस राम तां दिन करके करण पर्व आरंभ अमृत कवि ने लिखिया। जिहड़ा अमृत राय है उन्हें लिखिया सी सभा पर्व। इन्हें तो यह पटियाले लाइब्रेरी विच भाई वीर सिंह जी कहिंदे पिया है यह करण पर्व सभा पर्व जिहड़ा उन्हां कवियां ने लिखिया सी। ते हंस राम लिखदा कि 60,000 रुपया मैनू करण पर्व का इनाम मिलिया दसवें पातशाह कोलों। जिवें उन्होंने अपनी कविता च लिखिया, प्रथम किरपा कर राख कर गुरु गोबिंद उदार, टका करे बख्शीस तव मोको 60,000। यह करण पर्व भी पटियाला लाइब्रेरी विच ही पिया है। सो इस करके महाराज कवियां नू 60,000, किसी नू 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, पहला कवि जी कह आए ने करोड़ करोड़ रुपया भी सतगुरु महाराज ने कईयां नू बख्शिश कीता है।
1: पावन कवि गिनती मैं नीत, रहे निटे रखावे चेत।
0: 52 सोहने कवि, अच्छे टॉप दे कवि जेड़े सी दुनिया भर दे विच्चों दसवें पातशाह ने अपने कोल रखे। हर रोज उन्हां तों इहदे विच एक किंतु आम लोगों में भावें आ जाए, पर आप संगत जो हाँ यह गल है कि सतगुरु भावें किसी के सिर पर हाथ रख के लिखवा लैन किसी भी चीज नूं, जां सतगुरु सीधा लिख देन। इहदे उत्ते नहीं किंतु करीदा हुंदा कि महाराज ने उह तां कवि तों लिखवाया, जां लोग जिवें किंतु करदे इह तां किसी कवि की बाणी है, इस तरह की गल नहीं है। महाराज दसवें पातशाह लिखवाउंदे ने आप कृपा करके। ये आपां थोड़ा जिहा अगे चल लईए, ये प्रमाण अपने सामने आप ही आ जाएगा। एक कवि जिहड़ा आवेगा महाराज के पास, जिहड़ा ये दसवें पातशाह नूं कहेगा कि महाराज कित्थे किसे नूं कविता आउंदी है, जिहड़ा तुहाडे कोल आ जांदा है, जिहड़ा तुहाडा नाम भी लै लैंदा है, उहनूं कविता रचनी आ जांदी है। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने कह के लिखवाइया। यह नहीं हुंदा कि महाराज आप कलम पकड़न ते लिखण। अगे तां हुण जिवें कोई अज दे युग विच बंदा यह कहे कि गुरु ग्रंथ साहिब दसवें पातशाह ने आप तां नहीं लिखिया दमदमा साहिब, यह तां भाई मनी सिंह ने लिखिया, एवें लोकां च शंका ही पाउणी है। लो शंका पा दिंदे आपां हुण, शंका दी कीहड़ी गल है, शंका खड़ी वी पहलां वी तां भाई गुरदास जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का सरूप लिखिया, यह तां गुरु अर्जन देव जी ने नहीं लिखिया हैगा। इउं लोकां जिवें मर्जी शंका खड़ी कर दिओ, दसवें पातशाह कोई भी चीज नूं बोलदे तां आप ही रहे ने भई इहनूं ऐं लिखणा, इहनूं ऐं लिखणा है। उहनां कवियां नूं वडियाई दे दित्ती, चंगा भाई इह तूं लिख। इस तरह सतगुरु महाराज ने बहुत सारियां जिहड़ियां चीजां ने ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹਨ।
1: ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ, ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਤ ਪਾਏ।
0: ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇ ਰਹੇ।
1: ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕਰ ਤੈ ਆਇਓ, ਨਿਜ ਵਿਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਵਡਾਇਓ।
0: ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੀ ਕੋਈ।
1: ਕੀਨ ਸਵਈਆ ਅਰਥ ਛਪਾਇਓ, ਅਬ ਲਾਖਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਖਾਇਓ।
0: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਝ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖਣ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੇ, ਬੈਠ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਨਿੱਟ ਬਖਾਨੇ।
0: ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ کول بیٹھ گیا کول بیٹھ کے اس طرح بولیا
1: دیش دیش میں راور کیرت جس جس تے سنیت بستیرت
0: تھوڑی جی مہاراج مہما ہے نا بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے دیشاں دیشاں دے وچ ودیشاں دے وچ سمندروں پار تک تہاڈی مہما ہے
1: سب بدیا کے گنی بخانے رہ سبا تمری سنمانے
0: سارے پرکار دی ودیا دے جڑے گنی لوک نے کہے جاندے نے ایک چیز ہے مہاراج کتے سانو کوئی پوچھدا نہیں ستکار نہیں دندا پر تہاڈی سبا دے وچ آ کے سنیا ہے کہ ہر ایک نو

0: छोटे छोटे की किसी की गल नहीं, वड्डे तो वड्डा कोई यह जा कर्म मैं करता देखिया नहीं है। वह सिर्फ मूल मंत्र का जां जपजी साहब के पाठां का सुते सीधे अभ्यास करते देखे ने। सवेरे उठना उन्होंने एक बजे के करीब, अपना सारा दिन ही पाठ करते रहना। उन्होंने सतगुरु महाराज ने इसे तरह ही बख्शिश की। ये जड़िया हूतियां बस यही है, ये गावी है, सुनी है, मन रखी है, भाव दुख पर हर सुख घर लै जाए। जिहड़ा पाठ तुसीं मूंह नाल पढ़ो ना, इहनू कहिंदे कन्न नाल जरूर सुनो। जे कन्न नाल नहीं सुनना तां अंदरों जदों अंतरीव गुप्त रूप विच पढ़दे हैं तां इक कन्न अपने अंदर भी ने, जां अंदरले कन्नां नाल सुनो। मैं की बोल रहा, एक ओंकार कौन है, सतनाम दा की भाव, करता पुरख निरभाव है, वाहेगुरू है, निर्वैर भी वाहेगुरू है, वैर तो रहत है। इस तरह कहिंदे ने ध्यान करके इसे नूं हवन मान लो, कि कन्ना नाल बाणी सुनो।
1: जपते आत्म शुद्ध मार्जन दो कन टाल।
0: इस करके जपजी साहब पढ़न दे नाल आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। मूल मंत्र का भी उही मतलब है, जपजी साहब का भी उही भाव है कि हर प्रकार दे नाल आत्मा की जिहड़ी शुद्धि है अथवा जिहड़े दुख ने दलिद्र ने, यह बंदे की अपनी इच्छा ते सारी गल निर्भर करती है। जिमें भी कोई इच्छा कर ले, इच्छा सतगुरु महाराज जी उस तरह ही पूरी कर देंगे।
1: प्रथम श्लोक जप को भालो किसकी बिद कै दीन।
0: ये पहला श्लोक है जप जी साहब का, यदि विधि कहने मैं भले तरीके नाल कह दिती है।
1: आगे सब पोड़ी नको कहे तो सुनो प्रवीर।
0: कहने सुनो सियाणे, अगे पौड़ियां ने, पौड़ियां दे महात्म ने, पौड़ी पढ़न दे नाल ये महात्म मिलता है, ये महात्म मिलता है। कोई कार्ज रास करना जिवें गुरबाणी विच शब्द ने, इसे तरह कहने मान लो कि ये जपजी साहब दे विच 40 पौड़ियां कुल गिणियां ने, 40 सारा गिणती गिणदे ने, पहला एकाग विच गिण के, अखीर श्लोक विच गिण के, इस तरह कहने 40 कुल जिहड़ा है, फिर मूल मंत्र दे समेत इहदे नाल हर प्रकार दे कार्ज रास हुंदे हन।
1: श्री जप जी पौड़ी प्रत करै कामना पूर।
0: इत्थे हुण पहलां तां उचारण कीता सी गुरप्रसाद तक, फिर उचारण कीता पहले एके तक। ये पुराने बजुर्ग जिहड़े ने जां पुराने महापुरश ने, वह इस तरह किसी ने पुछना भी की पढ़िया करिए किवें, वह कहिंदे पहली पौड़ी का पाठ करिया कर। वो फिर यह पहला पुराने बजुर्ग क्या करते, पुराने नूं पता है। जो इस तरह फिर लोगों ने कई बार मैनू पुछना भी ये पहली पौड़ी कि हुई, भी पहला भी एका लग्या होया एक, फिर दूजे ते भी एका लग्या, सोचा सोच न हो गई। तो पहली पौड़ी जिहड़ी आ ने जिथे पहला एका लग्या होया उस नूं मन के चले ने कवि जी। इस तरह नहीं गिण लेना कि पहली पौड़ी सोचा सोच न हो गई वाली नहीं मनी। इथे इथे प्रार्थना रीति अनुसार पहली पौड़ी जिहड़ी नानक होसी भी सच ते आउंदी है उस शलोक वास्ते कथन कीता है। जे कल्ले यही जाप करी जावे आस सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच, तां भी कहिंदे बड़ा भारी महात्म मिलदा। आद गुरे नमै, जुगाद गुरे नमै, सतगुरे नमै, श्री गुरुदेव नमै, इहदे विच जिवें महात्म है इसे प्रकार कहिंदे पहली पौड़ी जिहड़ी है जे नाल रला के मूल मंत्र दे पढ़ी जावे तां फिर हर प्रकार दी जिहड़ी कामना जीव दी उह पूरी हो जांदी है।
1: पाठक सब सुख पाए कै बिघन बिना सै कूर।
0: जिहड़ा इहदा पाठक है उह शलोक अते मूल मंत्र ला के पढ़े तां उहदे सारे जिहड़े बिघन ने, हर प्रकार दा कूड़ है, भाव जितना भी मन दे उत्ते बोझ है जां कोई कूड़ राजा कूड़ परजा, सारियां चीजां कूड़ विच जिहड़ियां आ गईआं मन दे उत्ते, जिवें प्रभाव है काम क्रोध लोभ मोहंकार दा, इन्हां दा प्रभाव अपने आप ही दूर हो जांदा है।
1: आशा पर दूजी पर आद सच जे नाम।
0: आसा नूं पूरी करन लई जिहड़ी पौड़ी पढ़नी है, सो आद सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। सो इस पौड़ी नूं थोड़ा जिहा गलती इह भी होई भी है कि इहनूं गलती नाल दूजी पौड़ी विच शामिल कर लिया। पहली पौड़ी वो पहली हुई है जिथे तक दस्या होया, क्योंकि अगे जाके फिर थोड़ा जा कई बार छापेखाने च गलती हो जाती है, अगे तरतीब कवि जी पंजवीं पौड़ी ते जाके फिर ही उथे लियाउणगे। इस तरह पहली पौड़ी तो ही मन के चलना, एक दो तीन तो लैके

0: जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिहदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंदबुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच बैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंत्र करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा कम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे दी संगत इह कहिंदी है वी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं। उन्हां ने तां सीधा ही इह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आ के, वी बाणी च कोई ताकत नहीं है। अने इन्नी बाणी पढ़दे आ साडे घरां च ऐ चलदा करदा कोई। सो इस करके उत्थे जा के जदों इह कहीदा बई जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लैंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे? क्योंकि दुश्मन दा टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकदे ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर इह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम दी बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ दी बाणी जिन्ने भी जाप साहब दे पाठ हो जाण, चौबी साहब दे वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तां महाराज ने ये चौबी साहब दे पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। जिहड़े लोग किंतू करदे ने चौबी साहब ते, समा आ जाएगा जब तुसी खुदे कहोगे हां वी चौबी साहब दा पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जाणी है जाप साहब दी बाणी। फिर इसे प्रकार आईयो सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश कीती, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब दा पाठ। सो इहदे विच वी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून दे मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी है।
1: जप तप नेचा नारा कर है देखत साज।
0: ना कोई जप रहेगा, ना कोई तप रहेगा, ना कोई निश्चा रहेगा। लोग एहे जे बन जाणगे सारे जाने कि लोगों के जिहड़े भरोसे ने वो टुट जाणगे, ते साज बाज जिहड़ा दिखावटी बनावटी कम इन्हां दे विच लोग ज्यादा प्रवृत्त हो जाणगे।
1: जैसी गुर के भावने भावना तैसी गत होए शक्त।
0: सो जिस प्रकार दी जिहड़ी है ना भावना प्राप्त हुंदी है, तैसी शक्ति प्राप्त होवेगी जिही जी सिख दे विच भावना हुंदी है।
1: शरण भजो श्री राम के कल मैं नेचा मुक्त।
0: इस करके वाहेगुरु सच्चे पातशाह दी शरण ग्रहण करो, इस करके धन गुरु रामदास जी का जाप करो, धन गुरु नानक देव जी कृपा करनगे अथवा परमात्मा की मेहर होवेगी ताइयों कुछ बनेगा। जे निश्चय दे नाल बैठा रहेगा बहुत कुछ हुंदा है, जिहड़ा निश्चय नाल बैठा रहिंदा है, जिन्हां दा निश्चा गुरु ते बहादुर साहब ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते है, अंत नूं जित उसे दी हुंदी है।
1: वाहे गुरु ए मंत्र जप सगल करेंगे काम।
0: महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने बाकी कोई कुछ करन दी लोड़ नहीं है, मूल मंत्र है, जप जी साहब है, फिर श्वास श्वास आखो।

सतगुरु कहिंदे कर हर ट माला टिंड प्रो ध्यान दियो जी जग दियां रूहां एकाग्रता बख्शियो कहिंदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरु खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जिहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे माल ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडां उहनूं टिंडां कहिंदे कर हर ट इक खूह बणा आ जिहड़े सवास ने तेरे इहनां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे कौन एकाग्रता बख्शे इस माल नूं जिहड़ा तूं आए नूं खिचे कौन कहिंदे इस पीतर मन योग सरवण कीता इस पीतर बलदा की जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं योग हां मन जोड़ो जो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए खूह दिया माला टिंडा खिंचन लई मन बलद बनाओ ते मन तो साडा सिमरन करदिया भी दौड़दा रहिंदा है साहब कहिंदे ने तू मन नूं जोड़ के इन्हां टिंडा नूं खिच ते अगे जाके कहिंदे अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत ते भरो क्यारे बोलो ना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेड़े खेती बाड़ी करते उन्हां नूं पता है एक छोटिया छोटिया वट्टां पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुहानूं पता पिंडां दे रहिण वाले खेती बाड़ी करन वाले पता क्यारे पा दी दे साहिब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जो के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नूं जोड़ के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछिया महाराज शरीर ते केड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम महाराज खेतां विच ते क्यारे हुंदे इत्थे क्यारे केड़े कहिंदे अखां नाम जपण वाले दीआं अमृत नाल भर जांदियां अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत वगन लग पा तो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत वगन लग पा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी परसन लग पा है फिर आखिर महाराज होर कि क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत नाल भर जी गल कर लगता वा ते कहते फलाना बंदा बचन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपण वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती नाम जपण वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा साहब कहते ने मन नूं जो इस सवासा की माला बना मगर ए जे बरतना होया जे मन नूं तू ना विच जोता सिमरन विच मन नूं ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं थल्लो अमृत आना नहीं ओ इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई नहीं मन नूं विच जोना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओहो तो गज के बोलो ना तो

तरला पाओ तरला, जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

ऐसे गुरु तो वारे वारे जावा जेड़े मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने राजयां दी पूजा विच नहीं लाया। आख्या नहीं वह परमेश्वर जिहदी पूजा करनी आ वह राजान राजा, बोलो राजान, राजयां दा भी राजा है, किसे राजे दी पूजा विच नहीं ला दिता। समय असमय अनुसार राजे जिहड़े होए ने उन्हां दी भी पूजा संसार विच हुंदी आई। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने सिख नूं इह बख्शिश कीती कि किसे राजे दी पूजा नहीं करनी, राजयां दे राजे दी पूजा करनी। राजान राज, गरीब नवाज पातशाह। लोकी दिन चढ़दा है गड़बियां लेके पानी दियां, जग लेके पानी दियां, सूरज नूं मत्था टेकदे ने, सूरज दी पूजा करदे ने। साहब ने कहा नहीं, सूरज दी पूजा नहीं करनी, जेदी सूरज पूजा करनी है वह भानान भान आ, वह सूरजां दा भी सूरज है, ओदी पूजा विच लगना है। आख्या महाराज लोकी मस्या तो दो तीन दिन बाद पैसे सुटदे ने, चंद्रमा की पूजा करते ने। सतगुरु पातशाह कहन लगे नहीं, चंद्रमा के हाथ वास कुछ नहीं, चंद्रमा अपने कोलों रोशनी नहीं दिंदा, नमो चंद्र, चंद्रे की पूजा करनी। आख्या महाराज देवी देवत्या की पूजा करिए, कहन लगे नहीं देवी देवत्या की पूजा नहीं करनी। कहन लगे किनू पूजिए, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहन लगे ओ देवान देव्या, देवत्या का भी वह देवता है, ओदी पूजा विच मेरे मालक ने इन्हां सारे संसार दीयां पूजां विचों ला के मड़ियां दीयां कबरां तो चुक के बांह फड़ के आख्या ओ भोलिया मरियां दीयां कबरां ते मत्था ना टेक, आ मैं तेनू दसा जागत जोत जपे निस बासर, बुझियां जोतां दे उत्ते ना मत्था टेक, जागदी जोत नू मत्था टेक, शब्द सदा जपदी जोत है, जिहदे लड़ लाउण वाले बापू नू इक वार फिर आखो

एक मिनट ली शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। ए नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

आधार सत नाम नु आधार बनाओ, परमेश्वर की बंदगी नु आधार बनाओ। आओ हुण रीढ़ की हड्डी सिद्धी करो, समा दौड़ चलिया है। मेरा सतगुरु कृपा करे कुछ समा नक की कुरुंबड़ी ते सुरत टका के अंदरले विचार बंद करके जप के वेखो, मेरे सतगुरु का अमृत डोलन लग पैंदा अंदरों। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु।

0: आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गज के आख्या करो तुहाडे परिवार दा भला, तुहाडे जीवन दा भला, पंथ दा भला। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तरला है ऐरकां दे प्रचार दे विच ते बहुता तरला पाउण दी हुण जरूरत है, क्योंकि नेहरियां बहुतियां आ गईयां। एक पंछी आ सिख पंथ जिहड़ा है ना, एक पंछी लिखिया गुरबाणी दे विच, सरवर पंखी हेकड़ो। बोलो सरवर पंखी। सरवर दा पता है सरोवर, कहिंदे सरोवर दे कंडे उत्ते, इस दुनिया दे सरोवर दे कंडे उत्ते सिख पंथ रूपी एक पंछी है आण के बैठा, शुद्ध मोती चुनने वाला। सरवर पंखी हेकड़ो ते फाई वाल पचास, इनू फाइया लैके जेडे फंड वाले ने ओ मेरे सतगुरु ने लिखिया वा, पंजा ने लाख अहेरी एक जियो। इथे आख्या लखा शिकारी ने मगर एक सिखिया, केता बंचू काल किन्ना क चिर बचूंगा इन्हां दे कोलों। जे तुसी सुचेत ना होए, जे अपनी कौम ना जागी, जे गुरु दे सिखो तुसी एक एक बच्ची बच्चे ने अपना फर्ज ना पछाणिया, ते मैं गुरु दी हजूरी च कह रहा इनू खतरा ते कोई नहीं, इन्हें मिटना ते संसार विचों है नहीं, मगर नुकसान बहुत हो जूगा। आउण वालियां सदियां तक घाटा पूरा नहीं होगा, अंधेरियां आ गईयां जे बहुतियां, ते सुचेत हो जाओ, उठो अमृत वेले, इन्हां तो बचोगे कि तरह। हुण हर बंदा पुछदा जी बचा की है, जे पंथ नूं खतरे चार चपेरे पै गए ते इहदा बचा की है। इको ही बचा वा कि तुसी सिमरन अभ्यासी बन जाओ, तत्ती वाओ ना लगी कदों जदों पार ब्रह्म शरण आई। इहदी शरण विच आ जाओ सिखो, साडे दुश्मन भी तां बने ने, असीं तां अज तक नुकसान विच गए हां, असीं भी गुरु नानक दा पल्ला छड़ दिंदा। ते आपां जदों मरदाने ने वेख्या महाराज इनिया अनेरिया आ रही ने उड़ा के लै जाणगिया, वेखो लाल अनेरी आउंदी मूह अड्डी, पता नहीं किन्ने राक्षस विच तुरे आउंदे ने। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह कहण लगे मरदानिया इह अनेरी तेरा कुछ नहीं वगाड़ूगी। आख्या मारक इन्नी अग दी अनेरी आ रही उड़ा के लै जू, मरदानिया कुछ नहीं कहूगी तेरे मुंह चो जे ना रुकिया सतनाम श्री। जे वाहेगुरु ना रुकिया ते अनेरिया तेन कुछ नहीं कहणगी। मेरी हाथ जोड़ के पंथ नूं बेनती, तुसी पंथ रूप विच बैठे हो ते मैं इस गुरु नानक दे घर दा टुकड़ खाण वाला कुत्ता तुहानूं पहलों सचेत कर रहा। जे हालात तो बचना है ते नितनेमी बन जाओ। जे हालात तो आउण वालियां ने कई बंदे सोचदे, कई नहीं सोचदे, कई कहिंदे खाना पीना हसना सौना बस इन्ना कुछ ही है, मगर थोड़ा जिहा सचेत हो जाओ। कोई धरती की विपता नहीं जे जिहड़ी इस वेले पंथ दे दुआले नहीं होई। मेरी हाथ जोड़ के बेनती, जे सारियां मुसीबतां तो बचना वा, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोए ना, दे लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। इथो तक होर मुश्किल की बन सकती है कि अमेरिका की सब तो वड्डी एजेंसी जिन्हों CIA कहिंदे हो, उन्हें भी लिख दिता है कि सब तो दुनिया की नामराद बीमारी जिहड़ी एड्स है ना, यह सिखा तो फैली। यह छोटा जिहा दोष नहीं जिहड़ा तुहाडे ते लगा है, यह दुनिया च बदनाम करनू केवल इको ही दोष बड़ा है। तुहानू नफरत करनगे हवाई अड्डिया ते खलोते लोकी, तुहाडे कोल बह के राजी नहीं होणगे लोकी, जो उन्होंने अखबार विच लिख दिता है कि दुनिया की सब तो भयानक बीमारी जिहड़ी एड्स आ जिहदा कोई इलाज ही नहीं, यह सिखा तो फैली। गुरमुखो इहदे तो बचना कितना है, सच्चे मार्ग चलदिआं उस्तत करे, सच्चे मार्ग उत्ते आ जाओ। दुनिया के अखां विच घट्टा पा दूगा मेरा गुरु नानक, सारे तुहानू सज्जण समझण लग पैणगे, सानू गुरमुख समझ लग पे, मगर साडे चेहरे तो हम गुरमुखता ही लभदी नहीं, साडे चेहरे तो नितनेम लभदा नहीं, साडे चेहरे तो नजर नहीं आउंदा सतनाम श्री वाहिगुरु दा सिमरन। मेरी हाथ जोड़ के आप जी नूं बेनती है, कौमां जीवन दे विच ओही सफल हुंदियां ने जिहड़ियां अपने मुढ नाल जुड़ियां रहिंदियां ने। मेरा सतगुरु कृपा करे, रहमत करे, बचन दा करन नूं बहुत दिल करदा फेर सही। साहिब जी कहिंदे काली जिन्नी ना रावया, बोलो काली जिन्हां ने काले वालां विच परमेश्वर नूं नहीं पाया, धौली रावे कोए, धौली रावे। बाबा फरीद जी कहिंदे धौली दे विच ते फिर किसे ही रावे है ना, जिन्हां ने काले विच काले वालां विच जदों भज सकदा, बह सकदा, उठ सकदा, नाम जप सकदा है, जे उदों परमेश्वर दी बंदगी नहीं कीती ते धौलियां दे विच ते कदों परमेश्वर मिलने लगा है। हांजी
1: कल साई स्यो पिरहड़ी रंग नवेला होए।
0: बाबा फरीद जी सुचेत कर रहे ना, वैसे कहिंदे पिरहड़ी हुंदा प्रेम, कर साई स्यो पिरहड़ी, फरीदा उस मालक नाल प्रेम कर ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਨੋਖਾ ਤਾਜ਼ਾਪਨ ਦਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਵਿਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਈ ਨਾਲ ਬਿਰਹੜੀ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਮਹੱਲਾ